0: 5591 6473259100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
2: ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ।
3: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫੂਡ, ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ।
0: ਤਵਾ ਕਿਚਨ, 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਉਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੋਵੇਡਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699
4: यार, लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी। ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए। सर्विस भी टॉप नॉट सी। टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी। करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी तां हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton, 905-790-1699. 905-790-1699.
5: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
6: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा ता हो ही नहीं।
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
9: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकदे हो 416-518-3200।

काज खूबसूरत सवेर का, खूबसूरत लोग, खूबसूरत पंकज सी एच एल जो डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी रही अमेरिका और कैनेडा के सन सुन रहे हो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन के एरिए अमेरिका के जिते सानू तुसी तकरीबन 300 to 400 किलोमीटर के एरिए तकरीबन 500 to 600 किलोमीटर ईस्ट वैस साउथ नॉर्थ के कैनेडा के सुन रहे हो डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी जी कि ऑलमोस्ट तकरीबन 1.9 मिलियन लोग ने जड़े GTA एंड सराउंडिंग एरिया दे विच जिन्नी पापुलेशन GTA चा उन्नी ही पापुलेशन GTA तो बाहर है एक्सक्लूसिविटी दे नाल लंडन किचन वाटर कैम्ब्रिज दे नाल नाल सी तुहानूं बहुत सारे ऐसे शहर ने जिते सिर्फ तुसी AM 530 ही सुनते हो आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा चढ़दी कला वाला निरभउ निरवैर मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसी चलते रहोगे एक सफर दे विच सारे शामिल जो बहुत खूबसूरत पर तुहाडे साथ नाल जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे टिकटा दो लै ली तुहाडी अज्ज दी टिकट है स्टूडियो नंबर ने तुसी कॉल करनी है 647 जो स्टूडियो लाइन ने 647-360-4771-647-360-4771 स्टूडियोज़ के नंबर ने 647-360

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिये। अगे चल के वतनों दूर किरण होनी पेश करनगे, नाल दी नाल मनप्रीत जी इंडिया तो खबरां पेश करनगे, सुखी निज साहब भी हाजरी लाउणगे। सब तो पहला छतरी छत रिपोर्ट हाजिर है जी। अज 6:34 ते सूरज आया ते 8:04 ते चले जाना मामा चंद सिंह, 7:31 ते शाम नूं आएगा, सवेरे 4:46 ते चले जाना। अज दा तापमान 26 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड। कल नूं चखड़ झोले, थंडरस्टॉर्म, मीह नेरी सब कुछ आएगा, तापमान 28 डिग्री। फ्राइडे नूं 25 डिग्री तापमान, सूरज चमकदा रहेगा। सैटरडे नूं 26 डिग्री तापमान, सूरज चमकदा रहेगा। संडे नूं मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, 27 डिग्री। मंडे नूं 28 डिग्री, सूरज चमकदा रहेगा, हल्की हल्की बदलवाई दे नाल किते ना किते माड़े मोटे बारिश पएगी। हेटी वर्गे मुल्कां च खतरे की घंटी खड़कती रहिंदी है। 47 लोगों का कतल कर दिता गया एक गैंग वालों, ते बहुत सारे लोगों नूं किडनैप करके उतों लै के भजा के लै गए। किडनैप वालों की गिणती तकरीबन 50 दसी जा रही है। पिछले हफ्ते लॉ ब्लॉज वाले ने फैसला कर लिया ग्रोसरी चेन ने कि जिहड़ा दालां सब्जियां उत्थे फल फ्रूट पए ने उन्हां ते जिहड़ा लिखिया हुंदा ने कैनेडा दा, ए मैक्सीको दा, ए यूएसए दा, उह सारे साइन सुंझे चकते उन्हां ने। भाई साहब फिर साडे जिहड़े कनेडियन ने हो गए गुस्से, कहिंदे इह की कीता होए तुसीं। हुण उन्हां ने फिर दुबारा सारे सिंबल ला दित्ते जिहदे विच इह जी कैनेडा दा माल है, ए यूएसए दा, ए मैक्सीको दा, ए इंडिया दा। इंडिया दा जिते हम भी आउंदे अपने ग्रोसरी स्टोरां दे, ओह एक पेटी खोल के टेपा टूपा ला के आ कर और कर नक नूं संघा संघा। खैर
1: विजन वैनिटीज ते न्यू शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स से भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ले स्पेशल प्राइसेस। ए नहीं नहीं, वैनिटीज दी परचेज ते सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 9056711800, 905-671-1800।
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: आ भेने खरीद लिया गहने?
4: किथे, छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नी मिलिया चंगा सोना।
3: ले ए वी गल कोई कहण दी है, सोना ता सोना ही हुंदा है, गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है।
4: गल ता तेरी सही है भेन, किथों मिलणगे गहनियां दे सोने डिजाइन।
1: जनक ज्वेलर्स। जनक ज्वेलर्स ते स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है जिदे विच

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, Sipal Devecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options, Suno Chai Dene, Jantusi Visa Services, Sipal Devecho, Puri Family Vacation Upper Jandi Sochune, Jitano All Inclusive Vacation Packages, Pimil Dene, Ponchna Maji, Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper, Call Kar Sakdeo 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection open.
4: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
5: करें अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
6: 4165700157।
7: रेडियो भी है
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
7: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204 13-13 जां ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा
9: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां।
10: व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज जैस्मिन सैंडलर्स ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर विद सुखी निज्जर।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब, जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नूं मिलो। इन्हां कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानूं सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड़ है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500।
3: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, Nepal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne. Jan to see visa services Nepal de vecho, puri family vacation Upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
4: The wait is finally over. Gordy Kuman of REMAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at REMAX Gold Realty to book your unit today.
5: करें अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
6: 5 7 4 1 6 5 7 0 0 1 5 7 8 1 7 4 के अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स हो गए नहीं नगता बन दिए। आज मेरे पास बिल्ली गए हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास? साथे कोड बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट द हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले ते लो वीडियो कॉल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए।
7: चल क्या रहे हैं यहां पर? ओ पाजी सेलिब्रेशन 40
6: मतलब है।
7: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

सुगंध वर्गा किस चरखे दी तंद वर्गा का उत्ते सजरी त्रेल वर्गा तो दिलां दे हुंदे मेल वर्गा बुड्ढे बाबल दे हाथ च डंगोरी वर्गा अमड़ी दी मिठी जही लोरी वर्गा गबरू ते चढ़ दी जवानी वर्गा किस प्यार ना दित्ती होई निशानी वर्गा मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास्य ठट्ठे दे लैके रंग तुहाडे रूबरू लैके

0: जी हाँ दोस्तों, जुड़ चुके रेडियो प्रोग्राम सारंग दे नाल। मैं तुहाडा होस्ट एंड दोस्त राजबीर बोपराए। ये आवाज जिहड़ी तुसीं सुन रहे सी, इह सी एमी बिरक हुणां दी। एमी बिरक साहब पहुंच रहे आ 30 अगस्त नूं। टिकटां जिहड़ियां है धड़ाधड़ निकल रहियां ने। सो एमी बिरक साहब दा शो आ जिहड़ा देखण दे लई 30 अगस्त दा दिन आ जिहड़ा, उह दिल दी डायरी ते नोट कर लो। ते साडे प्रोग्राम दे विच जगजीत मल साहब भी पहुंच गए। मल साहब सति श्री अकाल जी। इहनूं
1: जी मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल जी।
0: ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ?
1: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ?
0: ਐਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਸ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ।
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿਨ ਤਾਂ 2-3 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
0: ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ।

क्या दम हंसराज हंस अपने लिए यार बहुत माण वाली गल है कि हंसराज हंस साहब थोड़े अपने शहर टोरंटो पहुंच रहे ने 18 सितंबर हंसराज हंस लाइव इन कॉन्सर्ट लिविंग आर्ट सेंटर पंजाबी विरसा रेडियो दे सिंह हरजीत जी जिन्होंने तुसी नहीं सारा यार टोरंटो सवेरे 11 तो 12 बस AM 530 पंजाबी विरसा सुनदा ते सिंह हरजीत जी लैके आ रहे ने हंसराज हंस जी 18 सितंबर नू इनू कहिंदे आ गायकी जे पैसे लाउणे आ ना किसे नू सुनन दे लई ता ऐसे लैजेंड्स दे उत्ते पैसे लाया करो ते पैसा भी बड़ा नहीं बहुत ही सस्ती टिकट है ticketmaster.ca तो ले लो तुसी 18 सितंबर दी शाम हंसराज हंस साहब दे नाम लिविंग आर्ट सेंटर इन्ना सोहना ये वेन्यू बनाई बनया यार इदां दे गायकां लई है क्या साउंड है क्या सीटिंग है ते पार्किंग फ्री है कोई भी जानकारी लेनी है हंसराज हंस साहब दे शो दे लई तां सिंह हरजीत जी 647-448-1000 ते कॉल कर लो 647-448-1000 हंस राज हंस।